बीमाको लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका। आजै बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा अभिकर्ता। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौँ।